कबीर साहब जी की बाणी भी एक पंक्ति बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच गल आखी, बड़ी अजीब गल आखी। कबीर साहब कहते हैं, गुरु प्रसाद अकल सही अवर है। लक्ष्मी बहुत गौ नाल सुनना, कहते गुरु की कृपा के नाल मेरी अकल

स्थान करे ने वा छुरी गाय तिन गल तक तिन कर ब्राह्मण पूरे ना तो नया मैं ईसा पूरी रास पूरा वा पार पूर और करे हार सर्व धर्म का डेरा दूर नानक पूर रहया।

जाए, वेदावादी संवादी कुछ लोग मां के सामान दे, कई धात गंधार नुवादी संवादी बन दे, लेकिन ये गाण दे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाल यदि कोई होगी वादी संवादी, भावे मां सा हो भावे धात गांव।

गुरु साहिब जी का अपना ही परम पवित्र तन मन धन पिंड प्राण जाहो जलाल तुझको इत शाम इष्ट रूप निष्ठा अलकिस्सा गुरु महाराज जी का परम पवित्र हिरदा ते अपना ही रूप गुरु खालसा सात संगत माई भाई जीओ प्यार सत्कार उत्साह उमा जाओ शाओ चाओ उमा नाल संपूर्ण फतेह गजारो जी वाहिगुरु जी का जितनी दास ने प्रेम

अपने ही पवित्र प्रकाश दिन दिया। कोतान कोट मुबारक होवन सृष्टि के कोने कोने अंदर सुशोभित गुरु नानक नाम लेवा नूं अज दी पवित्र वैसाखी दियां अनंत बेअंत खुशियां मुसरतां शादमानियां ते मुबारक होवन दीन दुनिया लोक परलोक ते सूक्ष्म आत्मावां जो सचखंड विच वस गईयां ने उहनां नूं इस पवित्र वैसाखी दियां जिसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे राही दुनिया उत्ते एक नव जीवन लियांदा अते जितना नाज फखर गौरव इस दिन ते कीता जाए ओ बजा है। इसलिए सामर्थक बैठिया संगतां नूं देशां दे संतरां विच सुशोभित अज दे दीवान सजाण वालियां संगतां नूं आलमे अरवाह विच वसण वालियां रूहां नूं कोटान कोट वधाईयां क्योंकि साडी अरदास दा ए अनिखड़वां अंग है। जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया है। जे मैं इन्नी सीमा अंदर बैठिया संगतां नूं वधाई देवां ते अरदास दे इन्हां अखरां दी सही कदर कीमत न पाई जा सकेगी क्योंकि अरदास दा ए हिस्सा है। जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया है। देव तेग फतेह बिरद की तय श्री साहिब जी सहाय तो पंथ दी चढ़दी कला दी अज सारिआं नूं वधाई होवे। अज दा पवित्र दिन पंजाब दी सरजमी अंदर श्री आनंदपुर साहिब जी दी पुन भूमि उत्ते केसगढ़ साहिब ते आनंदगढ़ साहिब दी मुकद्दस धरती उत्ते जिवें मनाया जा रहा है। कमेटी ने चंद वरियां तो खास तौर उत्ते इस पुरब नूं धूमधाम नाल मनाउण वल ध्यान दिता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो रह रह के ओ नक्शे ओ तसव्वुरात ओ ख्यालात ओ नक्शा जात अखां दे विच मुनक्श हो रहे ने मुनक्श हो रहे ने कि किवें गुरु कियां संगतां अज उत्थे किरत किरत हो रहियां होवणगियां किवें केसगढ़ साहिब दी उच्ची ठेरी तों अज बाणी गुरु जी दे कीर्तन दी लय हो रहे होवणगे ते किवें कौम दे बड़े बड़े विद्वान आलम फाजल अदीब मुसन्निफ लिखारी मुतरजम अते बड़े बड़े आमल बंदे गुरसिख गुरमुख गुर संत भगत जन उत्थे इकट्ठे होके कौम दे नां कोई संदेश दे रहे होवणगे। असीं अपना हिस्सा इत्थे ही पा रहे हां। एक बारी फिर प्यार नाल फतेह जाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा। धर्म अंदर मजहब अंदर धर्म अंदर अज दे दिन एक परिवर्तन आया सी। मैं दो बारी मजहब ते धर्म कहा है वखरियां चीजां हुंदियां ने। मजहब होर हुंदा है धर्म होर हुंदा। धर्म तां उहदा भी है जो रब नूं नहीं मनदा। धर्म तां उहदा भी है जो परमेश्वर नूं एक नशा कहिंदा है या तसव्वर कहिंदा है या कईयां ने खाण पीण वास्ते लोकां लई हउआ बनाया है कोई उहदा भी धर्म है। लेकिन मजहब कुछ खास चिन्ह धारण करन नूं कहिंदे ने। दुनिया अंदर किसे भी कौम मिलत मजहब नूं वेखिए उसदे कुछ चिन्ह हन उहनां दा धारण करना मजहब कहलांदा है। लेकिन एक गुण ने एक प्रिंसीपल्स ने एक ड्यूटीज ने अते इसे तरह विशेष गुण ने जो सारी मनुखता अंदर सांझे ही हुंदे ने उहनां नूं धर्म कहिंदे। इशारतन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अमुल शब्द भंडार अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने जिक्र कीता है। आलमगीर धर्म दा जिक्र चिन्हां दे राहीं कीता है जैसा कि आसा दीवार अंदर सुन्नार दा जिक्र है। सुन्नार मीन जनेऊ। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत मठ धागे दा जनेऊ। जनेऊ भी चार प्रकार दा है। ब्राह्मण दा होर खत्री दा होर शूद्र दा होर ते वैश दा होर। इन्हां चार ही किस्म दे जनेऊआं दे पाउण दीआं रुत्तां वी चार ने। केवल ब्राह्मण नूं बसंत रुत्त विच जनेऊ पैंदा है बाकी सारिआं नूं इस रुत्त विच जनेऊ नहीं पैणा है। पर गुरु साहिब जी ने आख्या किसे रुत्त विच जनेऊ पाया जाए ते किसे किस्म दा होवे

31 निर्धारित रागां विच गुरबाणी दे कीर्तन तो बाद पेश है संत बाबा सुच्चा सिंह जी दा ओह भाषण जो उन्होंने 5 दिन तक चलन वाले अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन दे समापत होने वेले दूर दूर तो लखां दी तादाद विच आईयां संगतां दा धन्नवाद करदे होया कीता संत बाबा सुच्चा सिंह जी।

हो आप दयाल मनोना विसारयन साध जना के संग भौजल तारयन सागत निंदक दुष्ट।

इस ताल का नाम ध्रुपद है, राग का नाम तो तुम सुनी चुके हो। साहब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गरीब निवास जी का उचारिया होया पवित्र शब्द है। राग बिहागड़ा दी वार दे विच्चों ए शब्द है। श्लोक मल्ला चौथा, बिन सतगुर सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावे मर जम्मे आवे जाहे, बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्धे मारिए मुंह काले उठ जाए। चार पंक्तियां दा ए शब्द है। आप जी ने अस्थाई ध्रुपद दी सुनी है, अंतरा हुण लगा के फिर इसे शब्द नूं द्रुत चाल विच तीन ताल विच पढ़ांगे, एन टाइम दे उत्ते समाप्ति करनी है। प्यारी साध संगत, मैं आप संगत जी वल्लों श्रोमणी कमेटी दे प्रबंधकां नूं लख लख वधाई देना, जिन्हां ने अज दा इह समागम गुरुमत कीर्तन दरबार रागां दे विच राग दरबार जिसनूं कहिंदे आ उह करवाया है, और बड़ा ही उद्यम कीता है। यह बड़ा शुभ कर्म है जो इन्होंने प्रबंधकां ने कीता। बहुत ही साड़ी आसा दे उत्ते इन्होंने सही साड़ी आसा पूरी कीती है, आसा नूं चंद लाए ने। गुरु कृपा करे इसे तरह ही इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहन, बड़ी खुशी हुई है। सो आप जी हुण अगलियां पंक्तियां दा कीर्तन अंतरा श्रवण करो। बिन सतगुरु सेवै ठवर ना पावे, बिन

बीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवा अजनु समझ रच बिगड़िया ना हनी अजनु समझ

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है। मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चिया नू जरा इना दी गल्ला दी आवाज जे इधर आएगी ता मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल दस मात्रा ते अंतरा दस मात्रे दा ही सुलफाक विच सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।

संगत जी हो, ये आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु

गुरु बादशाह आप कृपा कीती है और असी अपने गुरु अगे बेनती करनी है। महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम ले जो आप जी ने कृपा बख्शिश कीती है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।